आदि खोला खबर को साथ में गरिमा विकास बैंक लिमिटेड सुरक्षित भरपर्दो बचत तथा आकर्षक ब्याज दर का लागि प्रतिबद्ध हिमाल सुनचाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहनाहरू ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचाँदी पसल वालिङ बजार स्याङ्जा।

0: सुनिए सुना अले हम लोग आठ बजे का छ
1: समय को साथ में जेतु सुनसादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ पांच गढ़े कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला।

आज कार्यक्रम को क्रम में राखी स्थित व्यापारिक विश्राम संगे पुनः स्वागत करते कार्यक्रम गांबसी का भाग में आज हमने कार्यक्रम गांबसी का भाग को बुधवार व्यवसाय में छुधवार व्यवसाय में रहकर नया तथा पुराना कृषि भाका कार्यक्रम में जोड़े तबरसंगे सहयात्रा करते अगाड़ी बढ़ी रहता छं। विभिन्न कलाकार आवाज में सजिएगा तीस विशेष भाका रहती बेला को क्रम में हमी अर्क कृषि भाका जोड़ सोही भाका संगै हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौं। यहाँ भने हामी सँगै रहनुहोला।

0: सुमित ए
1: समय को साथ में जेतुल सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।
2: रेडियो आदि खोला 105.4

0: सुनिए सुना अले हम लोग ग्यारह बजे के
1: इस समय को साथ में जेतु सुनसादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी लाइफ गुड